दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: जी हाँ दोस्तों, आज के खास कलाकार हैं गुलजार साहब जी, एंड द व्हाट्सएप प्लान इज रियली रियली बिजी. मेनी ऑफ आवर लिसनर्स आर सेंडिंग इन मैसेजेस, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू रीड मोस्ट ऑफ द मैसेजेस टू यू. सो द फर्स्ट वन कम्स फ्रॉम अनिल रामस्वरूप फ्रॉम बनोनी, एंड ही सेज ब्यूटिफुल ओपनिंग भजन बाय द ग्रेट अनूप जलोटा जी. गुलजार साहब बोर्न संपूर्ण सिंह कलरा ऑन ऑगस्ट 1934. He's regarded as an important Urdu poet of this era. He started his career with music director S.D. Burman as a lyricist in 1963. An absolute legend of our. And thank you for the many blessings there. Then we have Sakira, who says, Gulzar Sahib could succinctly describe a scene making one feel the lyrics. Example, Tujhse Naraz Nahi Zindagi, O Naam Gum Jayega, Chehra Ye Badal Jayega. He had the knack of capturing the essence of films just in songs. And I think we can all agree with Sakira's sentiments there. Then we have Professor Dalut, who says, Dear Veenaji, Gulzar born Sampurnan, Sampuran Singh Kalra is a legendary Indian poet, lyricist, author and film director. He is celebrated for his profound contribution to Indian cinema and Urdu literature, characterized by minimalist, emotionally resonant writing that bridges high art with popular culture. Very well said there. Then we have Ayla, who says, Gulzar is one of our very revered lyricists. He's considered a poet amongst poets. He, together with Sahir Ludhianvi, share the world stage as greatest shayars. One of our songs and ghazals, most of our songs and ghazals are composed by him. He is spontaneous in his choice of poetic vocabulary. He also compares very well with Javed Akhtar Sahab. And those are some of the comments that we've had. And we have one very special voice note that's come through. Let's listen to this.
1: Namaste, Veena ji. Thank you for an awesome show. The song is so beautiful. Na gum jayenga. It's about, you know, losing a loved one. And when you lose a loved one, you think about their voice and not hearing their voice again. And, you know, like it brings back memories of the things they used to say and all the things they used to do. Times may change, but your memories will live on forever. It's beautiful. Your voice is something you'll remember a person by. Thank you for an awesome show.
0: Thank you very much for those comments. And of course, what can one say? That's exactly what the song is all about. A very wonderful essence of the song. तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस बहुत ही खूबसूरत इंसर्ट के साथ. वी लिसन टू गुलजार जी इन एन इंटरव्यू वे ही टॉक्स अबाउट हाउ ही स्टार्टेड एज अ लिरिसिस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री.
2: गैराज में आप काम कर रहे थे, वो जो नौजवान था जो बिमलदा के पास गया, उसके ख्वाब जो थे वो तो राइटिंग.
3: मैं किताबें लिखना चाहता था और शायरी करना चाहता था. फिल्म में आने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं थी बिल्कुल. रघुनाथ झलानी बिमला के असिस्टेंट थे, वहाँ पे मेरे साथ रूममेट की तरह रहते थे, जिससे हम सुना करते थे सारे बिमला के यहाँ क्या क्या होता है. मैं नहीं तैयार था जाने के लिए, तो मुझे डांट पड़ी शैलेंद्र जी से. छोटी सी बात हुई थी बिमला के ऑफिस में बैठे हुए, उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड जो कुछ देवू ने कहा, मैंने बताई है सिचुएशन. तो बिमला ने बंगला में उससे पूछा कि वैष्णव कविता क्या होती है, शरीफ आदमी को क्या मालूम है. देवू ने कहा, दादा ये बंगला बोल भी लेता है और जानता भी है, समझता भी है, मत कहिए. क्यों क्यों? तो मैं गाना लिख के गया, मोरा गोरंग ले ले, मोरे श्याम रंग ले ले, सभी जानते हैं कि पहला गाना था.

जी हाँ दोस्तों, आज हमने गुलजार साहब को सम्मानित किया एंड वंडरफुल वॉइस नोट्स हैव कम थ्रू एंड वी नाउ लिसन टू अ वॉइस नोट फ्रॉम आपका सूरज हु ऑलवेज सेंड्स अ वॉइस नोट एंड लेट्स टेक अ लिसन टू दिस.

बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। खैर की बात है, मगर समापन की घड़ी करीब आ गई है और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 7 बजे के समाचार के बाद इट विल बी टाइम फॉर टॉक एट 7 विद आवर लोटस एफएम टीम। इट्स वंडरफुल।

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।